0: FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर अभी आप सुन रहे थे स्पॉटलाइट। अब से कुछ ही दिन में आप सुन सकते हैं मनी टॉक, और उसके बाद 15 मिनट बाद यानी कि 9:45 पर आप सुन सकते हैं मंथन। उसके बाद आप हमेशा की तरह 5 मिनट की हिंदी और फिर 5 मिनट में अंग्रेजी का समाचार सुनेंगे। उसके बाद विश्व दर्पण और वर्ल्ड न्यूज। उसके बाद
1: நேர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தர்மபுரி பண்பலை 102.5, ஏற்காடு பண்பலை 103.7. இனி கேட்கலாம் இடைவிடாத இசைமலை.